0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: सिक्स एम बिहान को 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
1: उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
3: स्लाविन एम बिहान को 11 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: खुदा जुगाई बाल बालिका फिर समय सजन छोड़नो वन भित्र जादा आउँदा साथी भाई खोज्नु
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चौकमा।
2: होंडा का विशेषताहरू
3: जापानीज उच्च प्रविधिबाट उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नयाँ नयाँ भर्सन बजारमा लन्च भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरू कम्पनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सचेन्ज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइनबाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरु मारे भन्ज्याङ ओखलढुंगा।
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880222 र 9842803000।

0: ਕਟਾਉਂਦਾ ਸਾਥੀ ਵਾਲੀ ਬਜਨੋ
1: ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬੋਰਡ
2: ਈਦਾਈ राई को साझ स्टोर में दीदी ने कपड़ा अर्डर करू मत एक्ल भे जाऊ न मेरे साथी
3: मैं राई को साझा स्टोर में जान लगा हो नया नया डिजाइन का कपड़ा लियान भाग अरे छानी छानी चिन्ने आज
2: जाऊ
4: राई को साझा स्टोर्स में तुम नया नया डिजाइन का कपड़ा सुपथ मूल्य में छानी छानी लै जानुस् यहाँ डाउन जैकेट सिलिकन जैकेट जुत्ता चप्पल बच्चा देखि वृद्ध समय जाडो र गर्मी दुवै मौसम में आवश्यक पर्ने फैंसी कपड़ा सुपथ मूल्य में पाइन प्रोपाइटर नारद मणि राई मोबाइल नंबर 9843909809 राई को साझा स्टोर्स स्थान जिला प्रशासन कार्यालय नजिक सोलुगुट कुमार नगर पालिक 5 सल्लेरी सोलुखुम्बु।

0: आज सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मूलन चेतना
2: हुंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी उखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जिनसुके मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
3: उखलढुंगा को लगी आधिकारिक विक्रेता होट मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाई
2: संपर्क नंबर 037590222 9852188002 और 9842880300

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि थप उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सबै उम्मीद समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी। ओखलढुंगा र खोटाङ को डिक्टल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सपेंस को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइन बुकिंग करी भुगतानी करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने।
3: ओखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारी
2: संपर्क नंबर 0 37 590 222 98 52 88 0 222 98 42 80 30 00।

यो बा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मात्य दुधकोशी समावेशी विकास आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मात्य दुधकोशी को समृद्धि मात्य दुधकोशी गांवपालिका सुनखुंड के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बुधवार साँझ 7:30 देखि 8 बजे समय सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ज अनलाइन र सुनो एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: কৰবালিকালৈ লাগু ঔষধ দুৰুপয়োগ বচাও
1: লাগু ঔষধ সামাজিক অপৰাধ হ কোনো কসৈলে প্ৰয়োগ নগৰৌ বাল বালিকালৈ লাগু ঔষধক প্ৰয়োগবাট টাড়া ৰাখো বাল বালিকাক সুংগতমা ধ্যান দি লাগু ঔষধবাট হুনে হানি কানুনী পৰিণাম বাৰেম জানকাৰী দি বাল বালিকাসং নিয়মিত সংবাদ গৰ্ণে গৰৌ বাল বালিকালৈ ঘৰমা মায়া সময় দিনে গৰৌ বিদ্যালয়মা জীৱন উপযোগী শিক্ষা দিনে গৰৌ বাল বালিকাক সকাৰাত্মক গতিবিধিলৈ প্ৰোৎসাহন গৰৌ
2: আন্তৰিক মামিলা তথা কানুন মন্ত্ৰালয় কুচি প্ৰদীপ দ্বাৰা জনহিতমা সাৰি সন্দেশ
3: सवारी साधन को इंजिन और तैतीस रूपकरण संबंधी सूचना
4: आदरणीय सेवाग्राही महानुभावर तपाईले आफ्नो सवारी साधन नया खरीद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधन को इंजिन र चेसिस को अवस्था रुजू वा अन्य कुनै कैफियत भई नभएको रुजू गरेर मात्र खरीद बिक्री गर्नका लागि यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
2: कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय विराटनगर
5: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौ सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ
6: मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौ मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौ वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण गरौ जीवन रक्षा गरौ
7: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: 才华之旅，速度 FM 不等等。
1: Solo FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishya ko lagi hamro abhiyan.
2: Sanche. Solo FM. Studio time.
3: It's 4 p.m. Aparanna ko 4 baje.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुन नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

वक्र मात्र हम एकदम मिठो गीत सुनी नहीं सकता सु लैवरी लैवरी भाई गीत को बोल रहे थे अब हमी संग मात्र गीत बाकी कार्यक्रम को अंतिम अंतिम समय में हम आई नहीं सकता हमी साथी को फोन लाइन भी लीन सकते क्योंकि कार्यक्रम ने निर्धारित करके समय सकने सकता जो आज जति जना कल कल ट्राई कर रेडियो सुनेर अंतिम समय समय साथ दिभ सब जना विशेष करीकन एक उच्च में धन्यवाद दिन चाहूँ विशेष धन्यवाद दिन चाहू मेरे बंद कटे का आवाज तब के रेडियो सेट मोबाइल शीर्ष में पुर्यान भरपूर मात्रा में सहयोग हने प्राविधिक मित्र श्रीकी मनु शेर्पा विशेष करी आभार प्रकट करते अंतिम में एकदम मीठो गीत बाकी जुन राष्ट्रीय भाव ने सजे एकदम मीठो गीत गाउ गाउ बाट उठ एकदम मीठो गीत राष्ट्रीय भाव ने सजे एकदम मीठो गीत बाकी मीठो गीत हमें सुंदी आज को कार्यक्रम गीति गीत को बसाई बाट कार्यक्रम प्रस्तुत रेविता राय बिताना चाहूं नमस्ते नमस्कार।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: अभियान चेक Sony FM, in studio time.
0: It's 7 p.m. Start for start with it.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई अपसेट प्रेस सोलू दुकुंड नगर पालिका पास सोलू कुंबू

0: Sound check. Sony FM in studio time.
1: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू.

0: check. Sorry, FM. Studio time.
1: It's 9 PM. Ratko 9 baje. टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएम मा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: News Star Colorya तथा सोला माई ऑफसेट प्रिंटिंग पेज सुनोद कुंडी नगर पालिक पास चलेरी स्कूल खुम्बू विगत देखि नई ग्राहक विश्वास जित्ती आयो न्यू स्टार कलरिया तथा सोला माई ऑफसेट प्रिंटिंग पेज थप सेवाहर का साथ में सब संग हमारा सेवाहर प्रेस संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल लेटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट बोर्डिंग बोर्ड फोटो जस्ट प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट छपाई गई साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसेल मूल्य में पाई दिव्या कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूब लाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल तार पाई सीवी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य में बिक्री वितरण गरिदै आएको छ सीजी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मेसिन माइक्रोओवन नुहाउने गीजर ग्यास चुलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध छ एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मेसिन झ्याल ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसेल मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेस्किनी तालचा वाल मिक्सर नुहाउने सर्वर बेसिन धारा कमोड पेन सेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मेसिन कंपनी के मूल्य में पाइन्छ भने ये सब मरम्मत पनि गरिन्छ र ग्यास वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ट्यांकी कलर पनि गरिन्छ यति मात्रै होइन सल्लेरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशप बाट ग्यास सिलिंडर ग्यास चुलो साथ ही सब खाल बाइक तथा स्कूटर मरम्मत गरिन्छ पार्ट पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसेल मूल्य में बिक्री गरिन्छ नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराइन्छ संपर्क नंबर 0385203389 0385203060 मोबाइल नंबर 9860324426 र 9841909250 न्यू स्टार कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रिंटिंग पेज सल्लेरी सुन खुम्बु
1: हाम्रो के दोष र पक्रिनु भएको सर
2: बाल विवाह गर्नु अपराध हो भन्ने थाहा थिएन तपाईँहरूलाई के दोष छ भनेर हुन्छ
3: हामी त जन्ती गएका त हौ नि सर
2: त्यही त कुरो बिग्रियो बाल विवाह भएको हुन लागेको कुरा त देखेपछि रोक्नु पर्ने हो नि त उल्टै जन्ती जाने भोज खाने अनि पक्राउ परिन्न त
1: तिमकै बाबुआमा

ईट सस्तापट नदी एजुकेशन सपोर्ट लीडर छिरिंग तामाङ 9851743381 श्री गार्मा माध्यमिक विद्यालय सोलु टिपकुण्ड नगरपालिका साथ सुनु।

0: Bonche. Sony FM is studio time.
1: 10 p.m. Ratko 10 baje.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।